0: पर मलाइक चानस हवा
1: दर दुर्गावा
0: आज मलाइक चानस हवा
1: दर दुर्गावा
0: अग मलाइक चानस हवा।

0: दम खावा
1: आधी मलाइक चान सहवा
0: जरा दम खावा
1: पर मलाइक चान सहवा
0: जरा दम खावा
1: अग मलाइक चान सहा हा हा हवा।

धाम हिलता इश्कहता एटम वाम हे गंगू तारुण्य तुझ बे भाम हिलता इश्कहता एटम

धाम हिलता इश्क हता एटम वाम गंगू तारुण्य कुल बे भाम हिलता इश्क हता एटम

0: अच्छा डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
1: बिल्कुल आती है, सुनो।
0: सुना।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: आपण ऐकताय रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज, सुरेल संगीत, विविध घडामोडी, शेती, महिला, युवक यांचं व्यासपीठ, सुरेल संगीताचा नजराणा, ऐकत रहा, आनंदी रहा, रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज।

चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: कागद पेन नहीं या वेड़ी मोबाइल सा नवा उपक्रम आए विवरण आनी माए।

0: मलाइक चानस हवा
1: दर दुर्गावा
0: आज मलाइक चानस हवा
1: दर दुर्गावा
0: अग मलाइक चानस हवा

0: दम खावा
1: आधी मलाइक चानस हवा
0: जरा दम खावा
1: पर मलाइक चानस हवा
0: जरा दम खावा
1: अग मलाइक चानस हवा।

बाम हिलता इश्क हता एटम बाम हे गंगू तारुण्य तुझ बे भाम हिलता इश्क हता एटम

हम हिलता इश्क हता एटम वाहम हे गंगू तारुण्य तुझ बे भाम हिलता इश्क हता एटम

0: दादी?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।